गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते

राखो राखन हार दयाला नानक करके कोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बानी अंदर दिते हुए सिद्धांत उन्हां नूं गुरु के सिखां ने किवें जीव के दुनिया दियां अखां सामने रखिया है उस इतिहास दे पन्ने आपां रोज विचारन दी कोशिश करनी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सने और पै नहीं जंक है कंचन माटी माने नह निंदिया ने उस्तद जंक है लोभ मोह अपमाना हरक सोग ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। इन चीजों की व्याख्या है इतिहास, इन्हों की प्रतख व्याख्या है। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर के द्वार मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। कितना चाह होएगा गुरु के सिखा नू इस जिंदगी दी कलना करन जा। कल रोज

0: बसी बसी जिस थाए बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताए।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग छरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नूं 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं लियाउणा होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज का वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल अते उस ब्राह्मण की स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी चौपाई तुरक सुबत जै सहज सुभाए जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो ये साडा राज है। मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया हो सकता वो इलाके दे विच बदनाम होवे। जबर खां पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिजनी को एक तुरंग चढ़ायो ए कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा पठान नूं भी खड़ा कर लिया पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लैके जा रहे इहने आ कुकर्म कीता है इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: अज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते असवा

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: करके इस तरह बैठ गए, ढिले पै गए हौली हौली। दस पिंड भी पिंड करद्या करद्या मेरा राज खोणगे, फिर थोड़ा खोणगे, फिर साढ़े सारे दे राज खोणगे। इस करके आपां नूं ढिले नहीं पैना चाहिदा।
1: नित प्रत दल सिंगन को आवै, लूट कूट कर मिट हट जावै।
0: हुण नेता प्रति सिंघां दे दल आउंदे ने साढ़े इलाके दे विच, लुट के फिर वापस मुड़ जांदे ने।
1: वाजित रहे बंदूक सदाई, मरे कि मारे फते बुलाई।
0: गोलियां दी आवाज आउंदी रहिंदी आ, कदे किते गोली चल गई, कदे किते मारते, कदे किते मारते। इस तरह ये हमेशा ऐसा कर्म करते हैं।
1: शाह पुकार सुनी इक सारी, लड़ियो आन लश्कर तब पारे।
0: हां एक बारी बादशाह ने साडी पुकार जरूर सुनी है, भारी फौजां भेजियां हन उसने एक बार।
1: अब कह जाए कहां कह शाहू, निर्बल अदक लखै मन माऊ।
0: सो इस करके हुण जे आपां हुण जाके कहने उत्थे बादशाह नूं, फिर वो जानेगा कि बहुत ज्यादा राजे जिहड़े ने निर्बल हो चुके हन।
1: बार बार की सुने पुकार, कै खिज परै करै बुरियार।
0: बार बार जो आप इस तरह पुकार करांगे उन्होंने कोले, बादशाह खिजेगा अपने ते साडे नाल माड़ा कर्म करेगा भी तुसी इन्ना भी नहीं कर सकते। एक जाना हैगा उन्हां पांच चार हजार जाने हैगे आ, थोड़े कोल इन्नियां लखां फौजां ने, तुसी कख नहीं कर सकते। आओ झिड़कां पावेगा।
1: एक सौ जे गुर के सिख मरै, आए हजारों के सुन धरै।
0: जे महाराज दा सौ सिंह शहीद हुंदा है, उहदी जगह ते हजारां दी गिनती च होर केस धारण करदे ने, भाव अमर छक लैंदे ने, ककार पहन लैंदे ने। इस तरह साडा उत्थे की मुकाबला है।
1: ने निपटे ने पाए पराजय।
0: सो इस करके ना निपटिए ते ना हारिए।
1: आन लाभ को लखै न काजै।
0: ओ नहीं जानदे कि हान की है लाभ की है। ओ ना साडे नाल निपटदे मुकदे ने, ना हारदे ने, ना ये समझदे ने कि हां लाभ की चीज है।
1: सुनो ग्रीशो करो उपाय।
0: सुनो ग्रीशो तो पाप पहाड़ी राजे हो, आपां हुण मिलके कोई यतन करिए।
1: यो बिगड़त कारज समदाए।
0: इस तरह तो अपना सारिआं दा कम जिहड़ा है वो बिगड़ जाएगा।
1: सुनत कुमंड चंद तब पाखा, को उपाय तुमने अब लाखा।
0: हां घुमंड चंद राजा कहण लग्या, चलो ये भी ठीक है कि तुसीं सानू कहिंदे हो, तुसीं की सोचिया है, थोड़ा की इरादा है कि आपां नूं की करना चाहिदा है।
1: बिना लड़न ते अपर ना को, मिले ना बचो छीन ले सो।
0: सो बिना लड़न तो होर तां कोई रस्ता नहीं है। इस करके उह सारा कुछ अपने तो खो लैणगे, ना कोई मिलना ना बचना।
1: प्रथम शाह टिग बनै न जाना, सेना संच काल कमसाना।
0: पहला बादशाह कोल अपना जाना बनता नहीं है, पहला तो आपां फौजां कट्ठियां करिए, फिर कमसाण दा जंग करिए।
1: लड़बे कहो लिप धरै जे आलस, राज करन की तरह न लालस।
0: सो इस करके जे राजा नूं कहने है आलस बड़ी करदे ने, इस करके तुसी राज दी जिहड़ी हुण आलस है ना, ये ढिल मठ है, इहदा तुहानूं त्याग करना चाहीदा है।
1: रिप बस होए न दंड बहीना, वदै प्रताप सदंड अधीना।
0: क्योंकि दुश्मन कदे भी दंड तों बिना अधीन नहीं हुंदा, दंड देना चाहिदा है। अते जिहड़ी प्रजा है ना, ये प्रजा दी एक गल ये हैगी आ,

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदान जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तां माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असीं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरतें वरतारा जग जथा
0: जिमें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर तीकह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने वचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल हुण इत्थों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने खाएगो दो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल उस सरकै दे सस्से नूं लैणा ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार
0: खारी तो भाव खारा समुंदर उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना खा लक्ष्मी तो लल्ला ਖਾਲ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता है कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खन जोगी लंग भोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा इह अखर विच किन्नी डूंघाई है। जां खन जोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंग भोग भाव। खालसा दो चीजां हो गईयां, इक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना, वो इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खन जोगी, तो जोगी हो गया लंग भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तां इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपट तो पाव, ये संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना मेल करना। इस तरीके नाल ये सारियां चीजां खालसे दे तीन अखरां विच ही ने। महाराज कहिंदे जे कोई इन्हां नूं विचार करे खा ते ला ते सा, ये तिन्नां विचों ही सारा कुछ ही निकल आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने खालस अखर नूं समझना सारयां दे वस दी गल नहीं, पर असीं तुहानूं कुछ अर्थे दे करके दसे हन।
1: चौपाई इमकै तूसन भय गुसाई,
0: इउं कह के महाराज सच्चे पातशाह जी फेर नहीं बोले, फिर चुप हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्ट चलाए,
0: देखदिया सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लको सुभाए खालसे गुरु को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है एक गुरु रूप है अते गुरु खालसा है।
1: बुझो पुन जो संसे उर को,
0: फिर महाराज कहने चंगा खालसा जी हुण जिहड़ा संसा सी तुहानू वो तुहाडा दूर करता, होर कोई कोई शंका होवे कहिंदे वह भी पुछ लो।
1: श्री प्रभ किम वरतै वरतारा,
0: महाराज ये दसो ये जिहड़ा वरतारा आप जी ने कहा है ये किवें वरतेगा।
1: किम भाणा होवे करतारा,
0: ये वाहेगुरु का भाणा किवें होवेगा सानू कुछ जरूर दस के जाओ जी।
1: समय कलो को होए,
0: कलयुग दे समय विच किवें किवें होवेगा वरतारा वरतेगा।
1: वदे राज नरप कहीं अनसोए,
0: तो इस करके आप जी ने कहा कि राज वधेगा, राजा खालसा राज करेगा, ये राजे बनगे।
1: हृदय खालसे लालस लहो,
0: खालसे दे हृदय विच लालसा है जी।
1: भूत भविखत की गत कहो,
0: आउण वाले समय दे कुछ बचन सानू जरूर सुनाओ।
1: इम सुन सिंघन की अरदास,
0: इउं अरदास बेनती जदों सिंघां ने कीती कि महाराज सानू दसो आउण वाला समा।
1: श्री कलंगी धर कीन प्रकाश,
0: कलंगी धर महाराज जी ने फिर कुछ बचन खालसे दे बेनती करन तों इउं प्रकाश प्रगट कीते।
1: 4,32,000,
0: महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इह 4,32,000
1: कलू आर बल करी उचारा,
0: कहने भाई वेदा शास्त्रा च उम्र कलयुग दी इन्नी लिखी है 4,32,000 साल कुल उम्र है, हले 5,000 साल ही लंघिया कलयुग, 5,000 साल च गेड़े खवाते अपने सारिया दे, तां हुण गाहां हले किवें लंघेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह खालसा पुछ रहा जी, ये खालसा जी पुछदे ने सारे भी ये बनूगा की साडा।
1: जिसमें संत होए ब्रह्म ज्ञानी,
0: महाराज कहने ऐसी नहीं गल है जिदे विच बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख होणगे।
1: सगरे दोख करे जुहाने,
0: जिहड़े रब दे बंदे होणगे रब दे प्यारे होणगे उह सारे जिहड़े दोष ने दूर करनगे लोकां दे।
1: दोहरा कल दर्शन के कारण उठे प्रांत एक बरक।
0: सो इस करके कल दे कलयुग दे दर्शन वास्ते कहंदे एक बरख एक प्रात भाव अमृत वेले उठो।
1: नगर दूर होए देखिए तब दर्शावे हरक।
0: दूर नगर तो दूर जाके बिठो सता ओ दर्शन करके ए खुश होया भाव कलयुग ने इस ढंग नाल एक साल कलयुग गुरु नानक दे दर्शना नू सवेरे उठ के तुरिया। भाव पहला तो किन्ना चिर कलयुग नू दर्शन नहीं दिते, जदों दर्शन करन दी इच्छा करदा सी महाराज ने सोचा भी इहदा भला हो जाना, भला इहदा असीं करना नहीं। पर फिर बहुत मिन्नतां तरलियां तो बाद कहिंदे इक सवेर उठिया महाराज गुरु नानक देव जी दे दर्शन करन वास्ते आया ता जाके इहनू किते दर्शन होए।
1: नगन शिशन बातल वपो करना भोजन खाए।
0: पर कहिंदे इहदा जिहड़ा सरूप है ना वह शरीर जिहा जिहड़ा वह चंगा नहीं सी, इह इहो जिहा ही रहिंदा हर वक्त नगन होण करके इस ढंग दे नाल इक ते हर स्वादां विच फसिया होया। कलयुग आप दी ते दुनिया नूं वी फसाउंदा स्वादां दे अंदर। जां तां खाणा जां विशे इह दो कम ने कलयुग दे, जां तां मूंह दे स्वाद ने जां विशियां दे स्वाद ने। आप भी इन्हां च फसिया होया ते कहिंदा मेरी परजा भी खाओ खाओ, 24 घंटे खाई जाओ जे सुते रहो जां विशियां वकारां जाओ। इस तरह का है कलयुग के दुनिया नूं अपने नाल ही ला के रखिया इसने।
1: नील वसन बोले हसे सह सुभाए नहाए।
0: तो इस तरीके दे नाल सोहणे ढंग दे नाल कहिंदे ने कि प्रेम नाल सहजे ही महाराज सच्चे पातशाह हसे और नील वसन जिहड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए सन नीले रंग दे।
1: दर्शन ते पातक गए मिटी संग सब देहे।
0: हुण दर्शन करन दे नाल जिहड़े पाप सी इह मिट गए और मन दी जिहड़ी शंका सी ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ।
1: ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਵਾਕ ਉੱਠ ਚਿੱਤ ਵੈ ਪੂਰਨ ਲੇਹੇ।
0: ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
1: ਚੌਪਈ ਜਾ ਪਾਂਡਵ ਹਟ ਗਏ ਸਮਾਜਾ।
0: ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਾਂਡਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
1: ਮਗਧ 1000 ਕੇ ਰਾਜਾ।
0: ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਗਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 1000 ਵਰਸ ਤੱਕ।
1: ਦਿਨ ਪਸ਼ਚਾਤ ਨੰਦ ਕੇ ਰਾਜੇ।
0: ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕਟਾ ਛੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਮਗਧ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
1: 1500 ਸਾਲ
0: ਤੱਕ ਇਹ ਨੰਦ ਰਾਜ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਸਮਾਜ ਭੋਗਿਆ।

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने बचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां, जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इक्को ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग दे जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे दे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, यह कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा। अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों, इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों, आ किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहें जे सारे जने इको ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो कि बचन कहें।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पिठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहने चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण का सीधा एक गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए खंडे बाटे का अमृत छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: जिहड़े पांडे ने तीर्थां दे उत्ते जाके फिर कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं उत्ते तीर्थां ते जाके दान देना है तो महाराज सच्चे पातशाह कहते इन्हां नूं भी दान नहीं देना पांड्या नूं इतिहादक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उत्ते जां होर ना स्थानां ते कहने महाराज सरबंस दान करो महाराज की पालकी भी लै ली होर सारा कुछ ही लै लिया महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारयां नूं हुण मना कर दिता है किते नहीं जाना होर ना कदे उत्थे दान देना ना होर थां ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्या नूं दान देना कहने गुरु घर दे विच ही देना जो देना इस करके ये गल पक्की कर लो
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर मम विचार सो नित भरपूर
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार इन्हां दे विचार करे एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल
1: सिख पुगावै मेरा सिख केस पेस ने मेरो ब्रिख
0: इस करके सिख पुगावै मेरा सिख मेरा जेड़ा सिख है ना वो सिख नूं ही छकावे भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे इस प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने वो मेरो ब्रिख बिख तो भाव जहर रूप जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है वह तो जहर रूप है उन्हें खवाना ते खाना
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग सो सकेस हुंदा सहत केसां दे जां केसां तो बिना मेरा होवे निसंग निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे
1: बामण सोई ब्यास सम दीवै दान उमंग
0: सो ओ जिहड़ा है ना केसा तो बिना वो जे केसा वाला बन जावे गुरु घर दा सिख बन जावे वो तो फिर ब्यास वर्गा बन गया ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे हां ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए होर सारा कुछ छड़ के
1: कन्या देवै सिख को लेवै नै कुछ दाम
0: सिख नूं कन्या देवे पर दमड़े ना लवे बेचना आदक दी क्रिया करनी फिर इसे प्रकार आ दाज दहेज आदक तो सतगुरु ने मना ही कीता है
1: सोई मेरा सिख है पहुंचे लै मम धाम
0: ओही मेरा सिख है ओ लै के मेरे धाम अपड़ेगा भाव मेरे सचखंड घर दे विच आवेगा ओ की लै के आवेगा जी कहिंदे पुन्न ओ पुन्न कट्ठे करेगा जेड़ा बंदा चंगे कर्म करेगा साडे दसे राह ते चलेगा
1: सरवर गुग्गा पीर जे जोगी भूत ना सेव
0: एक सुल्तानीए पीर सरवर ने जेड़े एक गुग्गा पीर जेड़ा है एक जोगी जेड़े ने एक भूत इन्हां दी सेवा नहीं करनी ऐवें कितें जाके उत्थे मत्थे टेक लो थां थां दे इह बड़ियां तुच्छ जिहियां चीजां ने जिन्नियां गिणियां ने इन्ने ओह नहीं है कि जिन्हें गुरु साहब के बराबर कितें चले जाणगे इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े पूर्ण भाई सिंह ने ना गुरु दे उन्हां दे ते इह सारियां चीजां दास ने सेवादार ने हथ जोड़ के उन्हां कोल खड़दे ने आके भी जे सिंह हो के उधर नूं तुरिया जावे महाराज कहिंदे ओह भी साडा फिर सिंह

0: सुपते निसमै सतगुरु मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी कीनो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तां है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडतों नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते ने किन्नी का किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कविया के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है ये गल इस तरह है। क्यों कविया के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार नाल आओ श्रवण करते हाँ। प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आख

0: फिर अपने शरीर के उत्ते सुंदर सोने के बने हुए कुछ ऐसे गहने जो संगत वालों भेटा कई बार होंगे और कलगी जगह ये नाल नाल गल विच सुंदर मोतिया की माला इत्यादिक सुंदर जड़े हैं वस्त्र शस्त्र गहने आदिक सजा के सतगुरु त्यार पर त्यार होंदे ने।
1: सभा बिखै कलगी धर आए,
0: संगत विच कलगी धर महाराज जी सज के सोहने ढंग नाल आए ने।
1: जामी कर प्रियंक जिस थाए,
0: सो जिथे चामी कर तो भाव सोने का जड़ा पलंग है महाराज का विछिया होया है।
1: आस्त्रन मखमल को कसियो,
0: सोने मखमले जड़े गदैले ने उन्होंने चादर सुंदर सराहने महाराज के पावन पवित्र स्थान से सजे हुए ने।
1: जरी सहत गौफन युत लसियो,
0: सो जरी दे सहत जेड़ियां गुंफे ने गुंफे झालर झालर पुराने समय च बनाते सन एक जरीदार। सो उदाहरण वजो जिमें श्री हजूर साहब का सेहरा लियाने वो इस तरह ही हों जरीदार जहा बनाया होया थले भी वो झालर जी बनाई होंगी है। इस तरह बहुत सारिया झालर पुराने समय च जरी दियां बना के लड़काउंदे सन।
1: इस पर थिरे बिसाल के पाला,
0: उस पलंग दे उते बहुत बहुत कृपालू दयालू सतगुरु जी सजे हैं।
1: आए खालसा गण तिस काला,
0: बहुत भारी गिनती दे विच गुरु के सिंह अमृतधारी और होर बहुत सारिया संगतां तैयार पर तैयार फौजा महाराज की हजूरी में जाके मत्था टेक दिया।
1: नमो करत अर बैठत हेरे, लगियो दीवान आन तिस बेरे,
0: मत्था टेकते ने आके दर्शन करते ने। उस वक्त बड़ा भारी दीवान सजिया,
1: हे मलट का धारण करे आगे चूबदार तै खरे,
0: हेमलस्ट का जिहड़ी सोने की लाठी हुंदी है पकड़ के चोबा चांदी दिया भी सोने दिया भी चोबा लैके सेवादार अगे खड़े हैं।
1: श्री मुक्ते तब हुक्म बखाना, गुनी कविशर पंडित नाना,
0: उस वक्त महाराज सचे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल के जेड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कविशर ने नाना प्रकार दे जेड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारिया बुला के लियाओ इन्हों को अज कुछ प्रश्न पूछने ने।
1: सब अन्न को हकार लियाओ जय जय डेरे ता सिदाओ,
0: इन्हों सारिया लैके आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हों के टिकाने घर बार श्री आनंदपुर साहब दे विच हरेक नूं बुला के लियाओ। अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए,
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारिआं नूं बुला लिआंदा।
1: तिनको देह नाम बताए,
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रहा हां।
1: केशो दास पुत्र कुवरेश,
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है।
1: द्रोण परब जिलकीन अशेच,
0: सो जिन्हें महाभारत दे विच्चों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है।
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो,
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिन्ने आए हैं।
1: ध्यान सिंह गुर दर्शन पायो,
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्होंने भी गुरां दे दर्शन पाए।
1: इत्यादिक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर,
0: इत्यादिक कुछ होर भी आए ने मुखियां दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया।
1: सादर बैठे सभा मझारे,
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन।
1: साप्रत श्री प्रभ गिरा उचारे,
0: जिन्ने जाने आके

0: है।
1: धर्म हिंद को मंत्र समेत, कर्म विनाशन को बढ़ेत।
0: तो जो हिंदुओं का धर्म से हिंदू मंत्र वेदा के मंत्र ये तो केस कटाउन नाल भी हो जाते हैं खत्म। वो जो एक राजा नंद की साखी सुनाई थी दसवें पातशाह ने, आप भुल गए हैं थोड़ी थोड़ी, याद भी करवा लेना मैं। महाराज ने पूछा सी सिंघां ने, महाराज हिंदू मत विच केस कटाने कित्थों शुरू होए ने? महाराज कहिंदे अज तों 2500 साल पहलां दी गल है। राजा नंद शूद्र राजा होया, एक उन्हें यह सोचा कि मेरा राज किते जिहड़े ब्राह्मण लोग ने अच्छे पवित्र केस रखण वाले कुछ नहीं खाण वाले साधुआं वर्गे लोग होंदे सी पहलां अच्छे, किते मंत्र पढ़ के मेरा राज ही ना उल्टा देण। उन्हें कुछ लालची ब्राह्मण कट्ठे किए, कहना जेडे मंत्र जंत्र ने इन्हों का हल दसो की है भी चलन ना। वो कहने जे बंदे दे केस कितों भी खंडन हो जान ना, कट्टे जान माड़े मोटे, तां ये मंत्र काम नहीं करते। राजा नंद ने पहला उन्होंने कहा मैं तुहानू पैसे दऊंगा जिन्ने कहोगे, पहला तुसी केस कटा लो फिर थोड़ा थोड़ा प्रचार करो। फिर इन्होंने की किया, सारे ही पंडितों के जबरदस्ती केस कट दिते, ताकि मंत्र ना चले। आप शहर में तो बड़े सेफ बैठे हैं, पिंडा में इन्ना गलत प्रचार हो रहा है कि पिंडा के सारे मुंडे केस कटाई जाते। क्यों? बिचे विच कोई ना कोई तो कीड़ा लग्या ही होया मगर जिहड़ा उन्होंने केस कट्टण लई मजबूर करदा। इस करके जे ये चीजा अपने बच्चों तक पहुंचन, बच्चों ज्ञान हो, तो बच्चे कहने पिता जी तुसीं सुनियाओ कथा, मैं तो टीवी देखूंगा, या माता जी कथा सुनना हो, पिता जी आते हैं, या दो चार बच्चे माड़े मोटे आ जाते हैं, वो जे सुनगे तो कोई असर पेगा उन्होंने, वो सुनते नहीं है। इस करके उन्होंने इन गलों का ज्ञान नहीं कि किनिया माड़िया चीजा जिहड़ियां असीं वरतते हैं। तो कहते ने भाई ये जिहड़ा है ना तंबाकू, ये तो सारे धर्मां नूं नाश करता है।
1: जो बिदार कल युग को जग मैं सोच आद गुण नाशक लग मैं।
0: कलयुग दे विच जिहड़ा तंबाकू है चोबदार हुंदा, जिवें यह चोबदार का काम करता है, सोच आद गुण नाशक लग मैं। यह जिहड़ा तंबाकू है ना, पवित्रता आदक सारी भंग करता है। जिथे भी कितने तंबाकू आ गया उत्थे सारी अपवित्रता ही अपवित्रता छा जाती है।
1: अदके अपावन कर बेहारो, कविन सभा में गुरु उचारो।
0: सो इस करके सारिया नू अपवित्र करन वाला जो तंबाकू है, ये महाराज कहने मैं तुहानू सारिया नू दस्या कवियां दे सभा विच भी तंबाकू जिहड़ा है ना ये बहुत माड़ी चीज है, किसे दी आखे अखाए बहुत ध्यान नाल चलना, हरेक चीज वल ध्यान रखो। सो खास करके इन्हां गल्लां तों सतर्क रहना। पता नहीं मैनू किसी बंदे ने दस्या सी, कहना लाल दंत मंजन डाबर वालियां दा इह च तंबाकू पैंदा, कहिंदे बाहर लिखिया भी होया। जे कोई वरतदा होवे कई बार, कोई ऐसियां जिहड़ियां चीजां जिन्हां अंदर तुहानूं शक पै जाए इहदे अंदर तंबाकू दी वरतों हुंदी है, वो चीज आपां नूं फट त्याग देनी चाहिए है।
1: दोहेरा उत्तर अपर जे रह गए, सतगुर सबन बताए।
0: हुण जिहड़े उत्तर बाकी रह गए सी, सतगुरु महाराज ने कवियां नूं पुछे, कवियां ने अपनी मत दे मुताबक जवाब दिते, गुरां ने फिर अपनी श्रेष्ठ बुद्धि राही उन्हां सारिआं नूं इन्हां प्रश्नां दे उत्तर सोहणे ढंग नाल दित्ते हन।
1: सुन कै जिल तोरे दे मैं निश्चय ता छिन आए।
0: सुन के जिन्हां उत्तरां नूं, एक तां उत्तर कवियां ने दिते उहदे च थोड़ा जिहा शंका बणिआ रहि सकदा, पर जदों सतगुरु महाराज जी उत्तर देण किसे प्रश्न दा, कहिंदे उहदे च तां झटपट बंदे दे मन विच निश्चा आ ही जांदा है, क्योंकि सतगुरु जी ने सुनाया है।
1: तारिखी शुभ गोप दस अवंदीना, शराप बनाए मरण काल नब शब्द होए, गोर करनी तज जाए।
0: हुण ये साखी पिछे ही सुनाई सी महाराज ने, वो अगे हुण साखी होर फिर सुना रहे ने। पहला विचों अजमेर शाह की साखी आ गई सी, ये हुण दोबारा साखी शुरू की, कहने जदों अपने मंत्रां दे बल नाल जमदग्नी लिखी ने स्वर्गां तों मंगनी लई सी गां ए काम तेन गऊ सांसर बाहू राजे ने कहा सी मैनू दिओ ना देण ते मंत्रां दे बल नाल उपर नूं उड़ा दित्ती इहने सांसर बाहू ने थल्ले तीर मारिया इहदे खुर विच लग्गिया ਉਹ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮਨਾ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੰਗਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਸਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੁਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਸਣ ਬਣਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸਰੀ ਬਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਸਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੋ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਖਾ ਕੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਜਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰੇ ਘੋੜਾ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ ਸ਼ਰੋਕਤਾ ਬਕਤਾ ਕੋ ਲਗੈ ਕਬੈ ਨਾ ਪੂਜ ਕਰਾਂਜ
0: ਇਹ ਸ਼ਰੋਤਾ ਤੇ ਬਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਰ ਨੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
1: ਅੰਧਿਆਏ ਵਿਦਿਆ ਕੁਖੈ ਸੋ ਬਾਦੀ ਜਗ ਮਾਏ
0: ਸੋ ਅਨਧਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨਧਿਆਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਕੁ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਧਿਆਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨਿਮਾ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ फिर वो कह रहे सी शाम दे वेले ना कंठ करे, सवेरे सवेरे जिहड़ी चीज याद हुंदी आ वो शाम नूं गल नहीं बनदी। पहला कुछ कानून सीगे ऐसे पढ़ाई दे कुछ असूल सन जिन्हां दे विच कई गल्लां दी मनाही सी। जदों दा यह समा अपना आया अगे तो अगे तो अपने कोल इक्को ही गल रह जांदी आ इहदे नाल की फर्क पै चलिया तां की हो गया जे ऐं कर लांगे। इस करके सतगुरु महाराज कहने भाई कुछ क जरूर ध्यान रख्या करो इन्हां गल्लां दा, समय समय अनुसार विद्या पढ़ो, बाणी पढ़न दा भी इक समा हुंदा, हर चीज का आपो अपना समा है।
1: दारद आरबल नाश होए आप दे ओ आए।
0: कहने जो छुट्टी वाला दिन मन्या सी पुराने समय च भाल हरी की कथा इन्हां दिनां च नहीं सी कर दिंदे, वो जगत विच चगड़ालू बनेगा, उन्हूं दरिद्र पएगा, उम्र नाश हुंदी है, तो ये तो भाव के सारिया आपदा उन्हूं पैणगियां। आनंद आई वो हुंदा ओ दिन जिस दिन पढ़ना विवर्जित हुंदा सी छुट्टी का दिन। सो आम करके अष्टमी चौदस अमावस पूर्णिमा आदिक इन्हां दिनां दे विच कई रोक दिंदे सन, एकम भी शामिल की जाती सी। पर पिछे जिहड़ा प्रश्न विच द्वादशी नूं कथा मने करन दा प्रसंग आया सी उहदा कारण दस्सिया सी, इस करके उहदे विच कथा भी मना की पुराने ग्रंथां दे विच। पर कई चीजां महाराज ने खालसे लई खोल भी दित्तियां। सतगुरु ने इन्ना कहता कि तुहाडी कथा बंद नहीं की, पिछों जिहड़ियां चलिया आउंदियां कई कृतियां गुरां ने अपनाइयां भी ने, कई कृतियां बंद भी कीतियां ने, कई कृतियां खोल भी दित्तियां ने। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि जिहड़ा है ना उपदेश करना ये भी तरीके अनुसार विधि अनुसार ही हो सकता है।
1: रज नारी त्यागन बने तजै रांड का भोग।
0: महाराज सच्चे पातशाह अपने खालसे नूं समझाउण लई कहिंदे ने अपवित्रता वाले दिनां दे विच खास करके जां बेसवागामी होना जां अपवित्रता वाले दिनां च माड़े कर्म करने इत्यादि के ये अपने पुत्रां धीआं नूं समझा रहे ने कि ऐसे माड़े कर्म करने नहीं हन।
1: बिन ब्याही अनरुचितिया त्यागै कुल अर रोग।
0: एका नारी जती होए पर नारी धी भैण बखाणा, ये महाराज ने आपां नूं वचन कीता। इस करके सतगुरु महाराज सारिया चीजा खालसे दसते ने बिना ब्याह तो कर्म नहीं करने चाहिए माड़े। तो इस प्रकार जिहड़ा है होर कई प्रकार दे कोई बंदे रोगी ने जां रोग लगे हुए ने जां विषय विकारी लोग ने जां माड़े कर्मां वाले लोग ने जां इह जिन्नियां भी चीजा ने इन्हां नूं आपां नूं समझण दी लोड़ है। इहदे सतगुरु महाराज जिवें अज दे लोग प्रचार करते हैं दूर तक बड़े बड़े कंधां भरिया पईआं, बॉम्बे तो बहुत ज्यादा प्रचार है, आम इत्थे भी बड़ा प्रचार किया जाता है एड्स ना फैल जाए कि खतरा ना हो जाए। दसवें पातशाह ने उदों सावधान किया खालसे नूं भई इन्हां गल्लां दे विच नहीं पैणा, एका नारी जती होए पर नारी धी भैण विखाणा।
1: सोच छेक जल असुच होए निगुरै कर अपवित्र।
0: हुण जिहड़ा सोचे जाके पानी बच जांदा यह पुरानी चीज है। चलो अजकल हुण शहरां दे विच टैंकियां टूटियां ने, पहला लोग पानी लैके जांदे बाहर खेतां आदिक दे विच जंगल मैदान जाना, जिहड़ा पानी बच जाना लोगों ने वह अखां छिट्टे मार लेने, वह दातण कर लेनी उहदे नाल। फिर सतगुरु ने जदों खालसे नूं अमृत छकाया फिर शिकायतां आउण लग पईआं, महाराज इह तां अमृत दी मर्यादा कई जाने रखदे ही नहीं है, उस पानी नाल ही दातन कुरला कर लेंदे ने। तां महाराज ने कहा ना बई ये कम नहीं करना, नंगे सिर नहीं जाना, नंगे सिर कोई क्रिया नहीं सी कर दित्ती महाराज जी ने। इस प्रकार अपवित्र पानी की वरतों नहीं करनी, जिहड़ा बच जांदा पानी डोल देना है, फिर जिहड़ा जूठा पानी है इहदी वरतों नहीं करनी, एक नगुरे का जूठा नहीं पीना इहदा भी अपवित्र मन्निया जांदा है।
1: सवान सुपच जूठा अलप कत बंदा जल असित।
0: यह जिहड़ा जल असित, असित हुंदा अपवित्र ते मैला पानी। सो ये जिहड़े पानी ने जिवें कोई समान है, हुण कूकर ने पानी जूठा कर दिता, कई लोग कहने चलो इहदा काला जूठा हुंदा है आपां पानी पी लैने इहदा, महाराज कहने ऐसा पानी कदे भी नहीं पीना कूकर आदिक दा जूठा। एक वो बंदे जिहड़े अपवित्रता दा कम करदे होण खास करके इन्हां विच हुण अमृत छकिया होया बंदे दा ते बंदे अपवित्रते वाले बहुते कम करदे, ऐसे लोग गंदगी आदि का काम भी करते हैं, फिर उत्थे अपनी पवित्रता नूं भंग नहीं ना होण देना। इस करके महाराज ने कहा देखो भाई अपवित्र पुरशां दे नाल पानी पीना, उन्हां नाल बैठ के रोटी खानी, यह माड़ियां गल्लां ने। बाकी जिहड़ा थोड़ा जिहा पानी खड़ा होवे उत्थों नहीं पीना पानी, क्योंकि पुराने ग्रंथां च लिखिया सवा मन तो वध पानी जिथे खड़ा हो पानी सुच्चा मन्निया जांदा। बाकी थोड़ा पानी जिथे खड़ा होवे, क्यों हुण तां टैंकियां टूटियां ट्यूबवैल नलके बहुत ने, यह पहला नहीं सी हुंदा। पहला किते ही खूह हुंदा सी जां लोक आम तौर ते छप्पड़ां च नहाउंदे सी, ये खड़े हुए पानी च नहाउणा, उत्थे करके इस करके मना करदे सी महाराज। घट बंधा घड़े विच देर दा पिया होया पानी जिहड़ा उत्तों ढकिया होया वह मुश्क मार जांदा, किरम पै जांदे ने, वह पानी नहीं पीना, मैला पानी नहीं पीना। इहां पानी वी ध्यान नाल पानी पीण तों नहीं रोकिया, पर कहिंदे पहलां पानी देख तां लओ, जे पानी तुसीं देखोगे नहीं ते पानी है कैसा। इस करके भाई पानी भी बड़े
1: जोगे। तो इस करके सच्चे पातशाह कहने ये जिहड़ियां सारियां चीजां ने ना ये अयोग ने, क्योंकि वेदां पुराणां विच भी कहा है कि जिहड़ा बंदा शंकर वर्णिया है, मलीन है, मैला है, तंबाकू की वरतों करदा, शराब की वरतों करदा, मीट आंडे आदिक की वरतों करदा, माड़ियां चीजां सारियां जिहड़ा बंदा खाई जांदा है। श्रोता सुन नारक पशु अनकुलीनी जोग। सो इस करके कहंदे ने जिहड़ा श्रोता है श्रोते नूं भी नुकसान है ते कथन करन वाले नूं भी नुकसान है। तां ते कहंदे ने जिहड़ा ये हर बंदे नूं नुकसान ही नुकसान हुंदा इन्हां गल्लां दे विच, क्योंकि कई चीजां आ जांदियां ने, खुद बंदा माड़ियां चीजां खांदा, पहलां भी आ चुक्या इशारा, दुबारा फिर कहंदे ने। हुण कई बंदे अपने पंथ विच, एक पंथ विच अपने इन्ना वधिया कथावाचक होया, इन्ना वधिया कि लोक उहनूं सुणदे ने, अज भी उहदियां कैसटां सारिया देशां चलदियां ने। हुण तां चढ़ाई करके उहनूं काफ़ी साल हो गए, उहदियां किताबां भी ने छपियां होईयां। उह बंदा बेहद शराबी सी, जिथे जी करे पी के डिग पैंदा हुंदा सी, पर लोक हले भी सलाही जांदे ने उहनूं। पर वह बंदे का की प्रभाव पैना किसी बंदे उत्ते जिहड़ा आप ही डिग्गिया फिरदा। इस करके इत्थे सतगुरु कहंदे ने जिहड़ा बंदा धार्मिक है ना, जिन्हें खास करके उपदेश करना है, वह बंदे का अपना खाना पीना बहुत ठीक होना चाहिए। जे उहदा अपना खाना पीना माड़ा फिर संगत नूं भी गलत पासे ला सकदा, किसी बंदे नूं गलत भी कह सकदा। वह कह सकदा कोई गल नहीं, जो मर्जी खाओ पियो मौजां करो, इस तरह दुनिया नूं गलत मार्ग उत्ते पा सकदा, ते उह बंदे का माड़ा ही माड़ा असर पै सकता हर वक्त।
2: पंथ रचियो मैं धर्म हित पूजा दान न खाए।
1: महाराज कहने मैं पंथ रचिया धर्म वास्ते, धर्म नू कमाउण लई, ना कि आपने पंथ बनाया भी जिथे मर्जी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जिन्ने रुपये आए खा पी छे मौजा कर लिया। कहने मैं इस करके नहीं बनाया यह, जिन्ने मर्जी जिथे निशान साहब ला लिया, जिथे जी करिया प्रकाश कर लिया, जिथे जी करे ऐ पैसे कट्ठे कर ले ते ओ खा ले। कहने ये तो जहर खाने वाली गल है, इस करके पूजा का धान नहीं करे खाना खालसे ने।
2: लोभ बंद मानत नहीं शुकर जोगी पाए।
1: तो इस करके जेड़ा बंदा बहुता ज्यादा लोभ दे विच बन्निया पिया है तो उन्हां बंदियां दी गल नहीं मननी, नहीं तो कहने शुकर आदिक दी जूनी विच बंदा चलिया जांदा है। जेड़े बंदे लोभ दे विच पए होए ने ना उन्हां बंदियां ने मगर ज्यादा नहीं जाना।
2: दिवस रैन गुर चरण भज कुल की कर है कार।
1: हां रात दिन तुसी एक काम करना सारिया ने, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ये जिहड़ा काम है करना है, ते कुल दे जिहड़े काम ने अपने घर दे कारोबार ने गृहस्थियां ने करने ने, नाम जपना है।
2: पाप बिगाड़ै सिख मन साखी सुन उपकार।
1: मेरा सिख होके जिहड़ा पापा नूं परे कर दे, पाप कर्म ना करे, साखी सुने साखी सुनावे, ये दो कम करे, उपकार दा कम करे, किसी नूं साखी सुना के सीधे राह लाओ, आप साखी सुनो।
2: खंडे की पाहल जिनूं सो शस्त्र को धार।
1: जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमर छकिया होया है वह शस्त्र जरूर पहनना अपना, ककार कृपान कंघा कड़ा कशहरा
3: ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ।
2: ਕਰੇ ਜੀਵ ਕਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾ ਲੜਦੀ ਅਨੁਸਾਰ,
3: ਪ੍ਰਾਰਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੋ ਤੁਮ ਨਿਤ ਵਡਾਈ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੋ ਨਾ ਜਈ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਿਆ ਕੜਾਹ ਖਾਣ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਖਾਣ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੂਗਾ, ਉਹ ਆਖੂਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਰਾਹ ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
2: ਰਲ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਕੋ ਪੀਠ ਨਰਿਪ ਕੋ ਦੇ।
3: ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜੇ।
2: ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਤੈ ਸੁਰਪੁਰ ਕੈ ਜਸ ਲੇ।
3: ਜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2: ਤਜ ਧੀਰਜ ਰਣ ਤੇ ਭਜੈ ਜਗ ਮਹਿਲੇ ਅਪਵਾਦ।
3: ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
2: ਮਰੇ ਪਾਪ ਫਲ ਭੋਗਿਆ ਪਾਏ ਨ ਕਿਸ ਐਲਾਦ।
3: ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
2: ਜਾਤ ਬਰਣ ਕੀ ਕਾਲ ਤਜ ਮਿਲੇ ਖਾਲਸੇ ਸੰਗ।
3: ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ।
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਮਨ ਰੱਬ ਗੂੜਾ ਰੰਗ।
3: ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ।
2: ਅਮਰੋ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸ ਜੋ ਧਾਰਾ ਸੁਖ ਪਾਏ।
3: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ।
2: ਵਧੇ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਭ ਰਵਨੀ ਪਰਛਾਏ।
3: ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਧੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਛਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2: ਵਧੇ ਪੰਥ ਪਰ ਧਰਮ ਨੇ या बिद कल का धर्म।
3: कहने कलयुग का एक धर्म थोनू दसदे हैं, वधे पंथ, अपना पंथ तो बहुत वधेगा, पर जेड़े होर धर्म भी बहुत चलणगे, जेड़े होर धर्म चलणगे ना दुनिया दे विच, ओ नहीं वधणगे, ओ थोड़ा जा चिर चल के डिग पिया करनगे।
2: वरतै सकल जहान मैं बिरला जाने मरम।
3: सारे जहान दे विच लोग आपो अपना धर्म चलाउणगे, कोई किते कोई किते, नवे तो नवे गुरु बनणगे, नवे तो नवे पखंडी लोग पैदा होणगे, लोग उन्हां विच उलझणगे भी, पर कोई अपने धर्म के मर्म नूं भेद नूं जाण नहीं सकदा। लोग धर्म नूं असल धर्म लोग समझदे ही नहीं कि धर्म है की चीज, धर्म नूं लोग मखौल करदे ने।
2: बिरला जाने मर्म,
3: बिरला बंदा मर्म तो भाव हुंदा भेद नूं जाणेगा।
2: करता हुक्म होए हो मैं तब कल जोरे हाथ।
3: सो इस तरीके नाल कहिंदे जदों करता दा हुक्म होया उस वक्त कलयुग ने हाथ जोड़े। महाराज कहिंदे कलयुग साडे कोल आया भी सी, जदों कहिंदे असी संसार दे अंदर अवतार धारिया, कलयुग ने भी आना सी तां साडे कोल आके बेनती भी कीती उहने।
2: राज तुम्हारो बेर हम हमें पंथ के साथ।
3: महाराज नूं कहना जदों तुहाडा राज होवेगा, मेरा भी राज होवेगा, तुसी भी आओगे उदों, तां मैनूं अपने पंथ विच रला लो अपने नाल। इस तरह महाराज कोल बेनतियां करदा सी।
2: जगन्नाथ की ठोर मोए द्वारका मैरन छोर।
3: पर जो कहना एक तां जगन्नाथ वाले थां ते मैनूं टिकाणा मिलिया होया, एक द्वारका दे विच मैनूं टिकाणा मिलिया होया, एक कई जगह दे उत्ते मैनूं माफी है जाण दी, ते तुसी भी अपने धर्म विच जरा मैनूं माफी दे दे आउण दी।
2: तैसे तुम मन राखियो सकल करूंगा काज।
3: जिवें उन्होंने मैनू रखिया तुसी भी मैनू रखो, मैं भी तुहाडे पंथ विच कई प्रकार दे कार्ज करांगा।
2: सकल लोक मैं जानियो मोर तुम्हारो राज।
3: क्योंकि सारिआं विच जाणिआ जांदा है गल कि मेरा भी राज है कलयुग दा, ते तुहाडा भी इस वक्त ही राज है गुरबाणी दा।
2: तब हम ऐसे कयो ते तुमको करनी सिद्ध।
3: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, मैं फिर कलयुग नूं इह गल कही कि तेरे समय दे विच इक गल दस कि केड़ी करनी सिद्ध होवेगी, भाव केड़ी गल दे नाल जीव दा भला होवेगा, प्राप्ति होवेगी, तू अपने समय विच मैनूं समझा इह गल।
2: बोला करनी नहे को, बोला करनी नहे को करो नाम की ब्रिद, करो नाम की ब्रिद।
3: कहना जी करनी तो कोई ना करांगा, बोला पावे बोलिया, करनी नाहे को करो, कहना नाम की ब्रिद ही करांगा, जेड़ा नाम जपेगा कलयुग दे विच नाम ही जपावांगा, क्यों मैं बाकी दे कर्मां नूं तां चलणी नहीं देना, मेरे राज दे विच होर तां कर्म सारे नाश हो जाणगे, बस नाम दे अगे मेरा जोर नहीं चलना, लोकी नाम जपणगे।
2: कला करावो बाप सुत नार पुरख को जुद।
3: महाराज कहने जरा सुना था तू की करेंगा। कहने कला करावो बाप सुत, कहने प्यो ते पुत दे लड़ाई कराया करांगा, घर घर दे विच नारी ते पुरुष नू लड़ाया करांगा, ये लड़दे रहा करनगे बेल।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक तो बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम की भगती की गल नहीं आनी, कोई उपकार की गल नहीं, कोई सेवा की गल नहीं, चज की गल तो मन च आनी नहीं। कलयुग बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोगों के, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़िया गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषय च प्रवृत्त होइए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे, वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम की गल करेगा, नाउं लए तिस बदनामी कल के लखण ए, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: वेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: वेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच, उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताए पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर, वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूदर बेचते पुतले।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूदर जिहड़े ने अपने पुत्र नूं बेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, केड़ा मेहनत करे केड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को, लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जटा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग, जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे। देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बौले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आके मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नू गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नू जाणा ते दूजियां नू भी नरकां विच लैके जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोणगे भी नहीं, ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नू प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो वंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: वंचन हुंदा ठगना, लोकां नू ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा के दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।